0: 97.8.
1: भैया जी बताओ ना, आप हो कौन?
2: मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था।